0: California.
1: Extreme energy drink.
2: निकट माता दीदी बहिनी, विकट माता दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले जीऊ।

0: चरक मेमोरियल हॉस्पिटल कर्मचारी संचय कोष द्वारा सूचीकृत अस्पताल।
1: यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल मा कर्मचारी संचय कोष का संचयकर्तालाई ₹1,00,000 सम्म को उपचार सहुलियत, कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत वार्षिक ₹1,00,000 बराबर को स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै आएको छ।
0: घातक रोग जस्तै मुटु रोग, मुटुक को शल्यक्रिया, क्यान्सर, मृगौला रोग, डायलिसिस, मस्तिष्क को रक्तस्राव आदि रोग को उपचार को लागि

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: निकटमा दिदी बहिनी, विकटमा दिदी बहिनी, योहोरिया दिदी बहिनी, 95 थोप्लो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 6 बज्यो।

को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाऊ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जीऊ।

0: आवाज बहन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज
1: 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट बोतल हरुमा

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।